आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छू वो हवावा विच तू, दिल विच तू, साहा विच तू, मैं जित्थों मिलूंगा ना रहा विच तू। इको आ दुआ मेरे उस रब नू, मैं जिन्ने पल भी जीवा होवे पहा विच तू।
1: Listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाडाची लाडाची ग आवडती ला चंद्राची चंद्राची।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स

0: सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में जानिब फ्रॉम द मूवी दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा गिरी जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर. वेंसडे का दिन अगस्त 26th एंड हैप्पी ओणम टू एवरीवन. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे बिकॉज आज ऐसे सब सुंदर सुंदर बनकर आएंगे ऑफिस में. यू नो द वुमेन विल बी वेयरिंग ब्यूटिफुल साड़ीज एंड मेन विल बी वेयरिंग द ट्रेडिशनल आउटफिट. आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग दिस राइट. मुंड एंड कुर्ता या एंड इट इज सच अ सरियल एक्सपीरियंस. यू नो एवरीबडी कम्स टुगेदर वगैरह गो हैव सद्या. मजेदार दिन होने वाला है और सुंदर सुंदर फोटोज भी आ जाएगी. बताओ अब लड़कियों को क्या चाहिए. आप सुंदर सा रेडी हो जाओ और एक सुंदर सी फोटो मिल जाए, दिन तो वही इस सोच से ही बन जाता है. लव दिस ट्रैक यार, बहुत सुंदर गाना है. द वे इट एक्सप्लेन्स द लॉन्गिंग बट स्टिल यू नो दैट काइंड ऑफ लव कि यार तू जिधर भी है तू बस खुश रहे, यही मैटर करता है वेदर यू आर विद मी और नॉट. खूबसूरत यार.
1: जल्दी है तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में.
0: और इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ.
1: मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है.
0: जी हाँ, और साथ में कॉकटेल टू से ये भी आ

All these amazing tracks are lined up for you in this hour. लेकिन आपको पता है दिन की शुरुआत होती है आपके हालचाल जानने से, आपकी एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग से. सो आ जाइए 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए और साथ में बताइए कल का दिन कैसा था और आपके क्या प्लान्स हैं. आज डिसाइड हो गया व्हाट यू गोना वेयर? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज मस्ट बी सेलिब्रेटिंग ओणम. सो क्या प्लान है, क्या होने वाला है, व्हाट्स एक्साइटिंग हैपनिंग टुडे, जानना चाहूंगी मैं. एंड टू ऑल द पीपल who are already on their way to their work या फिर निकलने वाले हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ संभल के ड्राइव कीजिएगा, बी वेरी केयरफुल, फोन वगैरह यूज़ नहीं करना है. और जो पैसेंजर प्रिंसेस बन के बैठे हैं मुझे मैसेज करो चुपचाप, चलो 3311063 पर. एंड विशिंग यू ऑल एन अमेजिंग डे, सेंडिंग अ ब्यूटिफुल ट्रैक दीपाली सहाय की आवाज़ में, तेरे पास में मैं वापस आऊँगा मूवी से. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. जब हैरी मेट सेजल से जीवे सोने जी ब्यूटीफुल ट्रैक यू लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड वी हैव गॉट मैसेजेस ओवर हियर. नाजनी जी का मैसेज आया है, कहती है डू योर थिंग विद पैशन एंड इंटेग्रिटी इवन इफ फोक्स डोंट नोटिस यू. We do what we do not for an applause but because we know it's right and that is so true. You know, कई बार सिर्फ लोगों की validation के लिए हम चीज़ें कर देते हैं पर हमें दिल से खुशी नहीं मिल रही होती है. So दिल से खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने दिल की सुनोगे. So do what you want whether somebody applaud for you or not. हमारे पास भी तो दो हाथ है ना, हम अपने लिए cheer कर सकते हैं, हम अपने लिए ताली बजा सकते हैं. ठीक है, किसी ने किया तो well and good, नहीं किया तो भी good है. संध्य जी का भी मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग लिसनर्स, हैव अ ब्लेस्ड डे ऑल ऑफ यू मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद फ्लावर्स, होप एंड ऑप्टिमिज्म, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद ऑल द लव, टेंडरनेस एंड ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच संध्य जी. एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. When your day is wonderful, cherish it. When it becomes difficult, stay strong. Be grateful every day. Indeed. अगर बढ़िया दिन है तो खूबसूरत memories बनवा के जाएगा, और अगर थोड़ा difficult दिन है तो कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा. जी हाँ. And इमरान जी का भी message आया है, Hi early bird RJ Tanisha. You have such a warm and welcoming tone. You bring so much positive energy to the airwaves. It is impossible to stay in bad mood after listening to you. That is so sweet. Thank you so much. प्यारे हो यार आप लोग ना, बहुत ऐसे वर्चुअल वाला हक भेज रही हूँ मैं आप सबके लिए, और ये प्यारा सा गुड मॉर्निंग भी.
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
1: हाय हाय,
2: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस.
1: आज तो वेरी गुड वेरी नाइस सब लग नहीं वाले हैं. जी हाँ. वेल, सेंडिंग अ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. लौट कर आती हूँ कुछ देर में. मैसेजेस का सिलसिला बंद ना कीजिएगा. 3311063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास.
0: कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: कूल सॉन्ग.

0: सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ओह नो, फिर से स्कूल।
0: अरे, समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशंस आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th ऑफ अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
4: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
0: And
4: Doha Center, shop more, pay less.
0: Old Airport Road, Doha and Alcor.
4: Call 70222525.
0: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: तनिषा
1: ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल उदित जी आपके और मेरे लिए कह रहे थे जी थैंक यू उदित जी हम सबकी तरफ से यार लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड आई रेड समथिंग एंड इट स्ट्रक अ कॉर्ड विद मी एज यूजुअल यू नो एंड देन आई हैव टू शेयर इट विद यू सो इट सेड मुस्कुराते बहुत हो तुम कभी खुश भी रहा करो ओ माई गॉड That is so true, right? इतना fake smile करने लगे हैं हम चीज़ों पे like there are things which we are not okay with but we can't do anything about it. It can be at work, it can be with your friend circle जिसमें कुछ लोग होंगे जिनके साथ नहीं बन रही है या फिर align नहीं हो रही है चीज़ें तो all I want to remind you मेरी जान कि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है ठीक है वो बहुत मायने रखता है तो जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो करो एंड यू नो ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड वी ऑल आर इन दिस टुगेदर हम सब इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं आई फील सो इवेंचुअली चीज़ें बेटर हो जाएंगी इस ही नोशन को लेकर साथ में चलना है यही सोचना अगर शुरू कर देंगे ना हम कि यार कुछ ठीक नहीं होगा I'm gonna be like this. ऐसे fake करते करते मुझे smile करने की आदत हो ही जाएगी because I'm faking it so well. That's not the way of life. हम ऐसे थोड़ी जिएंगे एक ही तो जिंदगी मिली है उसमें भी fake करेंगे क्या नहीं We need to have that pure smile जो कि हमारे दिल से निकल के आ रही है और उसके लिए आपको अपना ख्याल रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाकी आपके लिए प्यारे प्यारे गाने चलाने की जिम्मेदारी मेरी उससे भी छोटी सी स्माइल तो आती होगी ना आती है कि नहीं बताओ मुझे सुंदरी रेडियो 106.3 FM जी बिंदास

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: Delisha.
1: The Archie is saying, Baba Boom, if you haven't watched this movie, very good, I'm proud of you. You're listening to Radio Level 6.3 FM. Tanisha, you have a sad bindas morning children. Oh, answer, pucha weather, I like the weather. So right now the temperature is 34 degrees and it feels like 45 degrees as usual. Eventually, aayega, theek hai? Wo jo temperature drop hai, wo hoga. Aur aaj phir se हमें होप दी गई है कि चांसेस हैं रेन के कतर में वेंसडे और थर्सडे को आज और कल. लेट्स सी. सो इवन अगर कोई भी प्लान है बाहर बाहर जाने का सो ज़रा ख्याल रखिएगा उस चीज़ का. और हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं. धीरे धीरे बढ़िया वेदर आ रहा है मेरी जान. हाँ जी. वेल व्हाट इज दैट वन थिंग यू वेट फॉर, लाइक जब विंटर आएगा तो ये चीज़ करनी है मुझे. यू नो कुछ तो होगा जिसके लिए यू लुक फॉरवर्ड टू द विंटर्स. आई लुक फॉरवर्ड टू दोज ब्यूटिफुल इवनिंग्स यार, यू नो गोइंग टू सूक विद फ्रेंड्स और मीनापोर्ट पे बैठकर बात करना दोस्तों के साथ एक कड़क के साथ. होए इतना बढ़िया लगता है ना. And it feels like therapy in itself. आपके लिए ऐसा क्या है जिसके जिसके लिए आप यू नो विंटर का इंतजार कर रहे हैं, बताएं मुझे 3311106 पर मैसेज करके. और सुनते रहिए रेडियो 11.6.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

0: टास मॉर्निंग आरजी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

सुनीता जी का मैसेज आया है, वो बता रही है कि विंटर में मैं इंतजार करती हूँ कि एसी बंद करके खिड़की खोल के सोने का जो मजा है वो अलग ही है ना। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस। एज सून एज आई गो होम ना, मैं अपनी विंडो ओपन कर देती हूँ एंड देन मेरा सारा काम वो विंडो ओपन करके ही हो रहा है एंड इट्स सो प्लेजेंट, इट्स सो ब्यूटिफुल, अलग ही वाइब है यार। अरिजीत सिंह की आवाज में मैं हूँ दीवाना तेरा एंड देन दिस ब्यूटिफुल, ओ माय गॉड आई लव दिस ट्रैक।

0: इसके लिरिक्स कितने प्यारे लिखे हैं यार. बहुत कुछ बचा है, बताती हूँ बाद में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज ट्रैक, जैसे मैं वापस आऊंगा मूवी से मस्कारा था ना, द विच लाइक स्लोली ग्रोज ऑन यू. जग से लाज के साथ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है. इनिशियली आई वॉज लाइक हाँ ओके ओके गाना है ठीक है. नाउ जैसे जैसे सुना ना, इट हैज ग्रोन ऑन मी लाइक एवरी टाइम आई एम सिंगिंग दिस ट्रैक. सो या जग से लाज फॉर यू. अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं ये सब गाने, मतलब इस पूरे घंटे चलेंगे. लेकिन मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ बैक टू स्कूल बैच के बारे में, जो कि होने वाला है कल. यस फाइनली द डे इज हियर. सो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, आप जानते हैं. काफ़ी लोगों को ऑलरेडी कॉल जा चुके हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको जा चुके हैं. और अगर अभी भी कोई रह गया है जिससे कॉन्फर्मेशन कॉल नहीं आई है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर बताएं मुझे, एंड वी विल मेक श्योर कि आपको वो कॉल पहुँचे. एंड कल मिलते हैं 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक. बहुत सारा फन मस्ती और धमाल होने वाला है मेरी जान.
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: एक पहेली लीला मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में दीवाना तेरा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड कातिर बोट शो की तैयारी ऐसे जोर शोर से हो रही है ओल्डोहा बोट पर। नवंबर 4 से लेकर 7 तक ये होने वाला है और ये थर्ड एडिशन होगा कातिर बोट शो का। और इस बार जो थीम है, कैंपेन है बेसिकली क्राफ्टिंग वंडरफुल, वो हाईलाइट करता है क्राफ्ट्समैनशिप को, लग्जरी को, इनोवेशन को और कतर के मैरिटाइम हेरिटेज को। यस, और वी ऑल नो कि यू नो कतर बोट शो में वी कैन सी लग्जरी यॉट्स, सुपर यॉट्स, बोट्स, वाटर स्पोर्ट्स, मरीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस भी वहाँ पे हमें मिलते हैं। Also, it aims to connect Qatar's growing boat building industry with international marine brands and markets. And it is absolutely mesmerizing to see all that beauty floating over water. Yeah, bahut khoobsurat lagta hai. और ओल्ड दोहा पोर्ट जो है, इट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर इंटरनेशनल यॉटिंग एंड मैरीटाइम डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ यू नो सच इवेंट्स विच कीप हैपनिंग। एंड फन फैक्ट बताऊँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि ओल्ड दोहा पोर्ट हैज़ अ पर्ल डाइविंग कनेक्शन, राइट? क्योंकि हिस्टोरिकली कतर का जो मैरीटाइम और पर्ल डाइविंग हेरिटेज है वो यहीं पर हुआ करता था। उसके बाद यू नो लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडर्न वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और बहुत ही बड़ा है, यू नो 800,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया ये कवर करता है। सो बहुत अमेजिंग अमेजिंग बोट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगी एंड अ लॉट यू कैन सी। और कतर बोट शो सो फार हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड 4 इंटरनेशनल इवेंटिक्स अवार्ड्स बाय द वे। यस, ग्लोबल रिकग्निशन ऑलरेडी मिल चुका है। सो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जस्ट टू विटनेस दैट ब्यूटी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो देखो नजर रखना, क्योंकि टाइम पे डेट्स आर फिर से बता देती हूँ, 4-7 नवंबर। इस टाइम पे अपना वक्त थोड़ा खाली रख लेना और एंजॉय करना, और वेदर तो सुहाना होगा ही। यस, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

Tanisha. Salam Namaste Movie से शान और गायत्री की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और कतर की बात कर रहे थे हम, हमने कतर बोट शो की बात की. अब मैं बात करने वाली हूँ लुसेल इंटरनेशनल सर्किट की. क्यों? क्योंकि इट हैज बीन नेम्ड मोस्ट इम्प्रूव्ड एंड बिगेस्ट मूवर इन द सस्टेनेबल सर्किट्स इंडेक्स 2026. यस, सो इसका जो स्कोर था 17 पॉइंट्स जंप कर गया है, मतलब 31 प्लेसेस इन द ग्लोबल रैंकिंग. दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. और एक साल में इतनी इम्प्रूवमेंट, ये पहला है सर्किट जिसने करी है. सो दिस इज रियली अमेजिंग. और फिलहाल तो यू नो गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीनर ऑपरेशंस और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में एट लुसेल सर्किट. सो वो और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल होने वाला है, और भी ज़्यादा यू नो सस्टेनेबल, और साथ में एक बहुत अमेजिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल दीज इवेंट्स विच कीप हैपनिंग ओवर देयर. अलॉन्ग विद दैट लुसेल सर्किट, देखो कार्स तो वहाँ पर फास्ट चलती ही हैं, सस्टेनेबिलिटी की रेस में भी अभी काफ़ी आगे निकल रहा है. तो इट्स अ रियली कूल थिंग, और मज़ा आने वाला है. अभी बहुत सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं. एंड ऑल्सो डू यू नो दैट वी नो कि जो ग्रैंड प्री होता है उसके तो नाइट रेसेस बहुत सारी जगह पर होते हैं, पर मोटो जीपी की नाइट रेस सिर्फ और सिर्फ लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में ही होती है. हाउ इंटरेस्टिंग, राइट? एंड आई वेंट, आई थिंक लास्ट ईयर इट वॉज आइदर मोटो जीपी और समथिंग एल्स, एंड I was mesmerized. It was so amazing. It was so surreal to experience that. Bahut hi kamaal hai. Looking forward to the Grand Prix jo ki hone wala hai is saal. So, Radio 106.3 FM. Jiyo, bindaas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. श्रृंगार सुना आपने आस्था गिल और अकासा और साथ में रफ्तार की आवाज में. एंड हेल्थ की बात करेंगे, स्पेसिफिकली शुगर की.
2: Wellness fix.
1: भाई मुझे ना क्रेजी वाली शुगर क्रेविंग्स होती हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम दैट. इसलिए बोलूंगी क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. बट दोज हु हैव, मेरा सैल्यूट है जी आपको. सो एक रिसर्च हुई है जिससे पता चला है कि शुगर क्रेविंग्स आर एक्चुअली एन एक्सलेंट साइन ऑफ यूथ एंड हेल्थ. तो चलो इस चीज से तो मैं खुश हो गई हूँ. क्योंकि अगर आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होती है तो इट्स अ साइन दैट यू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू फील प्लेजर फ्रॉम लाइफ जनरली. एंड एज शुगर इज वन ऑफ आवर प्राइमरी प्लेजर सिग्नल्स, दैट्स व्हाई दे से कि अगर आप यू नो यू हैव अ स्वीट टूथ और यू क्रेव शुगर अलॉट, ऑब्वियसली वी नीड टू कंट्रोल दैट. इट इज नॉट गुड फॉर अस, बट इट इज अ साइन दैट यू आर हेल्दी एंड यूथफुल एंड इट इज गुड ऑल्सो. एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट सो गुड बिकॉज शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है. बट आजकल काफी अमेजिंग ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं और यहाँ कतर में तो भाई हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, देर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पर यू नो हेल्दी स्वीट्स आपको, डिजर्ट्स आपको मिल रही हैं एंड दे टेस्ट एज गुड एज दी नॉट सो हेल्दी शुगरी वाला डिजर्ट. सो या यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ऑप्ट द थिंग्स विच आर गुड फॉर योर बॉडी एंड आई एम सेंडिंग अ ट्रैक विच इज गुड फॉर योर इयर्स. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: सुनो,
1: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
4: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner अबू सिद्रा मॉल, where convenience meets choice and community meets style. अबू सिद्रा मॉल, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha.

0: Tanisha. You're listening to Radio All of 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. And बद्रा बहार सुना हमने अमित त्रिवेदी की आवाज में क्वीन मूवी से. What an iconic movie it was यार. ऐसे आप इसको रिवॉच भी करोगे ना तो बिल्कुल ऐसे बोर नहीं फील होता है. इट इज अमेजिंग. और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं उनका वेट 10-15% ऑफ देयर बॉडी वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बिकॉज यार क्यों बेचारे छोटे छोटे से मासूम बच्चों पर इतना प्रेशर डालना है. हाँ हम मुझे याद है लाइक ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम द बैग्स वर सो हैवी बिकॉज यू नो सारी बुक्स लेकर जानी है सारी नोटबुक्स लेकर जानी है. एंड आई यूज टू वॉक ऐसे स्लाउच करके क्योंकि बैग इतना हैवी हो रहा है बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है वेट. और कई बार जब ऐसे स्पेशल क्लासेस होती थी तो एक्स्ट्रा बुक्स एक्स्ट्रा नोटबुक्स होती थी तब तो और बैंड बच जाती थी. सो इट इज़ रियली गुड दैट मिनिस्ट्री ने ये एक चीज़ लोगों को क्लैरिफाई कर दी है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड प्लीज़ ख्याल रखिए छोटे छोटे नन्हे प्यारे से बच्चों के ऊपर इतना सारा बोझ नहीं डालना है. ऑलरेडी उनको कितना स्ट्रेस है यार इतनी सारी पढ़ाई का. एंड राइट नाउ आई एम रियली हैप्पी बिकॉज यू नो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने जो नया करिकुलम लेकर आया है और नए नए सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. और वो आगे लाइफ में कितनी हेल्प करने वाले हैं उन बच्चों I am just really happy about that. Stay tuned to Radio Olive to you with us. Cool song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour. Song of the
1: hour. Kya baat hai sir? Kya baat ye baat hai? Cool song.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को।
2: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aap ki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha.
1: Shankar Mahadevan and Madhushri Ji ki awaaz mein. Beautiful tracks from the movie Kuch Na Kaho only on Radio Ola 106.3 FM. Danisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par.
2: Ye hai chalte phirte dictionary.
1: So yesterday Prince had messaged me, yaar main aadhe ghante se aise parking mein baith ke wait kar raha tha that you're gonna say the word of the day and you did not. So uske liye आज मैं कॉम्पेंसेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया वर्ड है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. सो आई एम अ पर्सन हु डोंट लाइक लाइज. ठीक है, झूठ बोलना इट इज़ नॉट सेंसिबल टू मी, क्योंकि एक झूठ बोलोगे उसके बाद आपको 50 और बोलने पड़ेंगे उसको कवर अप करने के लिए. सो इट्स बेटर टू जस्ट से द ट्रुथ इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? सो द वर्ड टुडे इज टैराडिडल. TARADIDDLE. Taradiddle. It means छोटू सलाई या फिर यू नो पीस ऑफ स्टेटमेंट और मे बी ऐसी कोई चीज जो कि अनइम्पॉर्टेंट है और एग्जैजरेटेड है बट आपको पता है कि वो सच भी नहीं है. इट इज नॉट हार्मिंग एनी वन दोज लिटिल लिटिल लाइज, लेकिन इट इज अ लाई, इट इज नॉट द ट्रुथ. दैट इज टैराडिडल. एंड आई थिंक most of us do that. Like ek cheez mein I do taradiddling with my mom. Jab bhi main kuch khareed kar lati hu, and then she would ask, acha beta kitne ka hai? I was just, you know, price ko ekdum half kar dungi, aur agar bahut hi zyada hai to half se bhi niche le aaungi, kyunki yaar mummy daantegi, mujhe pata hai ye pakka hai. To us daant se bachne ke liye thoda taradiddle chalta hai. But you know, such kind of lies which might harm somebody in future, wo cheeze nahi karne ka, kyunki meri jaan, small lies turn big very quickly. Theek hai, and stay tuned to Radio Olive. Jio Bindaas.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: हर सुबह 6 से 10 हर जिस दिन निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

I pa movi se jeri gjithë si nga rbushat e marrë jeve asmi. Me Bervana, only on radio 11.6.3 FM. Të nisha apke sad bendas morning shëllra e bërë. आज की विजडम में मैं आपको बताऊंगी कि जो पेंसिल्स हैं उनके ऊपर इरेजर लगाने का आइडिया कहां से आया. Yes, I used to feel very happy जब मेरे पास ऐसी कोई पेंसिल हो जिस पर इरेजर हो. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि मैं कभी उस इरेजर को यूज नहीं करती थी बिकॉज मुझे होता था कि यार ये तो खराब हो जाएगा, मतलब आई यूज इट और ये खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या ही काम. पूरा एस्थेटिक मेरी उस पेंसिल का उस इरेजर पे बेस्ड होता था. सो 1850s तक ऐसे ऑब्वियसली सेपरेट ही यूज़ हो रहे थे पेंसिल और इरेजर. पर इरेजर को भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हम लड़कियों की हेयर क्लिप्स को प्रॉब्लम है या फिर यूनिवर्सली सॉक्स को प्रॉब्लम है, खो जाते हैं, वैसे ही इरेजर्स को भी प्रॉब्लम है, खो ही जाते हैं. पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यार, इतने इरेजर खोए हैं ना मैंने. और अभी मेरा नेफ्यू स्कूल जाता है हर रोज़, आई एम टेलिंग यू इफ नॉट एवरी डे एवरी ऑल्टरनेट डे वो इरेजर खोकर आ जाता है. एंड देन माई भाभी वुड स्कोल्ड हिम फॉर दैट कि क्यों ध्यान नहीं रखते हो अपनी चीज़ों का एंड ऑल. सो इस चीज से परेशान होकर 1850s में लिपमैन नाम के एक आदमी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये तो रोज का प्रॉब्लम हो गया, हमें रोज नया इरेजर निकालना पड़ रहा है, लेकर आना पड़ रहा है, दिस इज नॉट वेरी फीजिबल, क्यों ना हम इस पेंसिल पर ही एक इरेजर अटैच कर दें. तो एक तीर से दो निशाने और ऑल्सो टू इन वन हो जाएगी ना वो चीज़, आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा चीज़ों का. तो उन्होंने इसका पेटेंट करने के लिए कोशिश किया. इनिशियली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो मैन्युफैक्चरर्स के पास भी गए, दे लाइक यार ये क्या स्टूपिड सा इन्वेंशन लेकर आया है तू, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है चीज़ें, इनकी क्या ज़रूरत है, वी डोंट नीड दिस. बट ही वॉज वेरी श्योर कि नो दिस इज़ अ गुड वन एंड आई वॉन्ट पीपल टू यूज़ इट. उन्होंने सम हाउ यू नो बाई हुक एंड क्रूक ही गॉट इट मैन्युफैक्चर्ड और मार्केट में लेकर आए. एंड टर्न्स आउट पब्लिक लव्ड इट, बच्चों को तो मज़ा ही आ गया, इट वॉज अ हिट एट दैट टाइम. एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने उसको पेटेंट करवाया. और पहले तो कोर्ट नहीं होना करते थे कि यार ये तो एग्जिस्टिंग चीज़ है, आप कुछ नया इन्वेंशन तो लाए नहीं हो, इसको क्यों पेटेंट करना है. बट ही बिलीव्ड कि नहीं, दिस विल डू वंडर्स, एंड इट एक्चुअली डिड वंडर्स. यस, आफ्टर अ वाइल आई थिंक 1900s में उन्होंने वो पेटेंट को $100,000 में बेचा, विच इज $3 million से भी ज़्यादा राइट नाउ. और 1900s में $100,000 भी कितने ज़्यादा होंगे, imagine. So yeah, he made huge money out of such, you know, simple invention. Wahi art of noticing hi hai ki kaise hum ek problem exist nahi bhi kar rahi hai aur agar kar bhi rahi hai to itni zyada badi nahi hai, but still solution nikal liya us aadmi ne aur paisa kama liya bahut sara. Sahi hai na? Baaki kya aap bhi pencil ko uske aesthetic ko rubber se judge karte the just like me? मुझे अलोन फील हो रहा है, प्लीज बताओ ना 3311106 पर. स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: Tanisha.
1: Tanisha. KS Chitra aur SP Balasubramanian sahab ki awaaz mein bahut hi kamaal gaana hai. Whenever I listen to SPB's voice now, mujhe wo young wale Salman Khan yaad aate. Kya suit karti thi yaar Salman Khan ko, inki voice absolutely beautiful. You are listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha aur KS sad bindas morning chal raha hai yahan par, and back to school ke liye reminder de rahi hu meri jaan. Registrations close ho chuke hain, abhi aur try karne ki zarurat nahi hai, but ek aur you know back to school hone wala. तो सुनते रहिए आप हमें उसके लिए, बट जो कल होने वाला है उसके लिए बता देती हूँ. ऑलरेडी यू मस्ट हैव गॉट द कॉल राइट. अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर, एकदम तुरंत से पहले आपको कॉल आ जाएगा. जी हाँ, बाकी 27 अगस्त दैट इज टुमारो हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक. मस्ती ही मस्ती होने वाली है. आई होप सभी बच्चे रेडी हैं एंड एक्साइटेड हैं, बिकॉज हम तो फुल ऑन रेडी हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं.
2: New partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
1: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
0: And
1: Doha Center, shop more, pay less.
0: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
0: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
2: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at

हाँ जी, ये तीनों गाने आने वाले कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की. मोस्टली इट्स इमोजीज एक्चुअली. सो जो लाउडली क्राइंग फेस वाला इमोजी है ना, वो दुनिया का सबसे यूज्ड इमोजी बन चुका है. उसने टॉप स्पॉट ले लिया है ग्लोबल रैंकिंग में, वो लाउडली क्राइंग एंड देन टीयर्स आर कमिंग, वो वाला इमोजी. सो सिर्फ रोने के लिए नहीं, उसे ह्यूमरस वे में भी यूज़ किया जा रहा है ना, कि मतलब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई या फिर हंसते हंसते रोना निकल गया है, तो वैसी वाली सिचुएशंस के लिए भी उसे यूज किया जा रहा है. बट उसके लिए स्पेसिफिकली इमोजीज हैं, पर नहीं हमें ये यूज करने हैं. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपका मोस्ट यूज इमोजी कौन सा है. मेरा आई थिंक वो जो आई रोल वाला है ना, लाइक इट गोज अपवर्ड्स, वो वाला मोस्ट यूज है. आपका कौन सा है बताएं मुझे. 3311063 पर सेंडिंग रवि शेरगिल की आवाज में तेरे बिन सन सोने, ब्यूटिफुल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड ट्यून विद अस.

0: Delisha. Delisha.
1: That was Baron by Vinjari for you only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par aur waqt ho gaya meri jaane ka meri jaan. Milte hain kal subah 6 baje aur Thursday hai. Yes, energy ka level alag hi hoga aur khushi to aise aasman phaad ke niklegi. Ji haan bhai, I hope you guys have an amazing day today aur tasty tasty khana hoga aaj. To yes, sadhya ke liye jaane wale hum, so I'm super excited about that. Aur sab itne khoobsurat lag rahe hain na office mein. Beautiful, क्योंकि यू नो जो वर्क वेयर है, जो फॉर्मल्स है, उससे बाहर निकल कर आ जाए हैं, तो मस्त लग रहे हैं, मजा आ रहा है, एकदम वाइब है आज ऑफिस में. सो यस, आई होप कि सबका दिन उतना ही अच्छा जाए जितना मैं मेरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ. एंड अपना ख्याल रखिएगा एंड कभी मत भूलिएगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान. ठीक है, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

रहते हो, बिल्कुल जी रहते हो। अब देखो यार, अगली बार कोई आपसे एड्रेस पूछे ना तो बता देना कि हम तो दिल की धड़कन में रहते हैं। पिनकोड विनकोड नहीं पता हमको, बिल्डिंग नंबर नहीं पता है, लेकिन हम तो बस दिल की धड़कन में रहते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम जो है काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब अपनी जो है खराब सी सर्दी वाली जुकाम वाली आवाज लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। मुझे नहीं पता यार, इतने दिन तो मेरे अकाउंट में पैसे जो है वो नहीं चलते जितने दिन मेरा जुकाम चल जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आज बहुत अमेजिंग वाले गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एंड आपको बस जो है वॉल्यूम बढ़ाकर हमसे जुड़े रहना है। हर चीज पे बात करेंगे हम, फैशन पे, बॉलीवुड पे और कुछ ओपिनियंस पर भी। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना टॉक्सिक मूवी का आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करके जरा वापस आओ। उसके बाद जरा मौसम का क्या हाल चाल है उस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक भी हो रहे 10:13, दैट इज 10:13। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: बॉलीवुड के राइटर्स को ना ऐसा लगता है कि बस किसी भी गाने में उर्दू के कुछ वर्ड्स डाल दो, अपने आप लोगों को लगेगा कि ओ माय गॉड क्या फैंसी चीज लिख दी है इन्होंने। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कसोस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब जिस हिसाब से मुझे जुकाम और सर्दी हो रखी है, मेरे घर वालों को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है, या जिस तरीके से इंडिया में बारिश हो रही है वैसे ही कुछ माहौल होगा, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि यहाँ इतनी गर्मी हो रही है कि बाल सुखा कर आप 5 सेकंड के लिए बाहर कदम रखो, बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने सैलों से ब्लो ड्राई कराए हो। 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का करंट टेम्परेचर दोहा में हो रहा है। मेरा फोन तो देखो मुझे यही बता रहा है, आप क्या हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। वैसे हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ह्यूमिडिटी पिछले कुछ दिनों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम रहने वाली है, एंड हवाएं जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आर की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है बहने वाली है। एंड मुझे नहीं पता है कि मौसम में परिवर्तन जो है वो पूरी तरीके से कब आएगा, लेकिन लेकिन लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अब जो है बेसिकली सितंबर 20th से हमें मौसम में बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, एंड 20th सितंबर तक ग्रेजुअली थोड़े थोड़े चेंजेस इन टेम्परेचर में थोड़ा सा ऐसे यू नो गिराव गिरता हुआ टेम्परेचर हमें नजर आएगा 20th सितंबर तक। सो आई होप कि हमें इस गर्मी से धीरे धीरे करके राहत मिले, एंड बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस राहत के लिए आपको जो है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आहट आहटी गाना जो है आ रहा है रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ एंजॉय करो एंड जरा मैसेज कर दो यार मुझे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गेट वेल सून कुछ तो कर दो, ऐसी आवाज वरना हमेशा सुननी पड़ेगी आपको, जल्दी से मुझे मैसेज करो। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय करो, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। Cool song.

आए हाय क्या गाना है, ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी जो है कोई बढ़िया सा जो है ट्रेडिशनल सा अटायर मैं पहन लूं एंड उसके बाद एक रील बना दूं ट्रांजिशन वाली, क्या बोलते हो? वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूं आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जहां आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूं एंड आप लोग भी मेरी लाइफ को मस्त बनाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे हो। हाय हेलो गुड मॉर्निंग तो कह ही रहे हो लेकिन साथ में गेट वेल सून भी कह रहे हो। पिछले चार दिनों से गेट वेल सून गेट वेल सून गेट वेल सून जो है वो मैं सुन रही हूं एंड अब लोग अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जो है ये सोच रहे होगे कि भाई इतना कितना तबीयत खराब है कशिश, ठीक ही नहीं हो पा रही है। मुझे जो है मोहम्मद यूसुफ खान जी ने भी मैसेज किया है कि कशिश ये जो लाइन आपने बोली थी कि इतने तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं टिकते जितना मेरे साथ ये जो जुकाम है ये टिक गया है, ये लाइन इन्हें अच्छी लगी, जोक अच्छा लगा। देखो यार ह्यूमर तो मेरा बचपन से ही अच्छा है, मुझ में चाहे आयरन की कमी हो या किसी और चीज़ की मिनरल की जरूर कमी हो सकती है लेकिन ह्यूमर की कमी कभी नहीं होती है। ह्यूमर के साथ जो है अपने दुख को व्यक्त किया है, मैंने दुख आपके सामने मैंने बताया था और इन्होंने कहा है कि हम तो पिछले तीन दिनों से आपको गेट वेल सून ही कह रहे हैं, अब तो बहुत देर हो गई है। वैसे देखो बात सही है लेकिन आप जो है इस बदलते हुए मौसम में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप पूरे टाइम जो है आई एम डैम श्योर कि आप एसी में बैठते हो एंड आप कार में या अपने व्हीकल में एसी चला के रखते हो एंड जैसे ही आप कदम बाहर रखते हो तो आपको जो है अचानक से टेम्परेचर चेंज जो है वो झेलना पड़ता है जो आपकी बॉडी अक्सर सह नहीं पाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कभी भी आप एकदम से एसी से उतर के गर्मी में और गर्मी से एकदम एसी में ना जाएं, बीच में ट्रांजिशन के लिए थोड़े नॉर्मल करें बॉडी को एंड उसके बाद ये टेम्परेचर का शॉक उन्हें दे। ये ही कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा बिना गर्म पानी के चल नहीं पाऊंगी, मुझे गर्म पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जाती हूँ गर्म पानी पी के आती हूँ, आप जो है गर्म पानी ठंडा पानी जैसा पानी आपको पीना है लेकिन पानी ज़रूर पीते रहिए एंड आप अमेजिंग वाले गाने जो है वो इन्जॉय करते रहिए। हम सब के सपनों से भरे हुए नैनों को समर्पित डेडिकेटेड ये गाना सपनों से भरे नैन आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ एंड कहते रहिए जियो बिंदास। अगर जरा बात करेंगे आपके स्ट्रेस को कम करने की तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस कराफा।

0: देखो जी, लाइफ में कुछ परमानेंट हो या ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा परमानेंट रहती है और वो है स्ट्रेस। किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में आ ही जाता है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, हर रोज की तरह आपको ये बताने के लिए आ गई हूँ कि स्ट्रेस किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि हमें हमेशा एडवाइस की जरूरत होती है, एंड ये बात आप जो है एकदम कहीं लिख के रख लो कि सबसे बेस्ट एडवाइस आपको खुद के सिवा और कोई नहीं दे सकता। बस आपको प्रस्पेक्टिव जो है वो बदलना है। सो अपनी किसी भी प्रॉब्लम पे आपको दो प्रस्पेक्टिव जो है उससे अपनी प्रॉब्लम को देखना है। सबसे पहले आप अगर 90 इयर्स के हो जाओगे तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे, एंड अगर आप 10 इयर्स के होते तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करते। इससे जो है इन दोनों प्रोस्पेक्टिव से देखने के बाद किसी ना एक प्रोस्पेक्टिव से आपको जो है सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। फिलहाल मैं जो है ऐसा लगता है कि गर्म पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, मैं पीकर आती हूँ। आप जो है अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करते रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, और जल्दी जल्दी मैसेज कर दो यार, शायद आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Year. Ye gana.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10, दैट इज 11:10। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Oh no! फिर से स्कूल।
4: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
2: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास. ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: कभी कभी ना मैं अपनी मम्मी के कुछ मैसेजेस पढ़कर जो है परेशान सी हो जाती हूँ। मुझे लगता है मम्मी ये मुझे क्या लिखकर भेज रही है, दाल चावल सरसों का तेल, रैंडमली मुझे ये मैसेज आ जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त, थोड़ा एक्स्ट्रा फन बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, क्या होता है कि आप ना कई बार कुछ चीज़ें याद रखने के लिए किसी की चैट को, यानी किसी के व्हाट्सएप को या किसी के बस इनबॉक्स को अपना नोट पैड बना देते हो एंड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास जाकर बस लिख देते हो। एंड जब आप उन्हें बताकर कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन रैंडमली सोचो उनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है नंबर जाता है एंड उन्हें पता नहीं है कि आपने रैंडमली क्यों भेजा है। एंड फिर आप उन्हें बाद में बताते हो उनके पूछने पर कि अरे वो तो मैं पासवर्ड जो है वो मैंने बदला था, इसीलिए तुम्हारे चैट पे लिख दिया। और यही हो रहा है इंटरनेट पे एक लेडी के साथ, और वो जो है अनजान है, वो उस इंसान से रिलेटिव भी नहीं। सो हुआ क्या, मैं बताती हूँ। सो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट मैंने देखा जहाँ पर एक लेडी ने पोस्ट किया है कि एक अननोन नंबर से उन्हें रैंडमली ग्रॉसरी के सामान का के नाम की लिस्ट जो है वो आ रही है एंड उन्हें समझ नहीं आया ये क्यों आ रही है। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि ये जो लेडी है जिसका ये नंबर है जो मैसेज कर रही है, उन्होंने उस चैट को अपना नोटपैड बना रखा है एंड वो कोई भी रैंडम चीज जो है वो लिख देती है, टूथब्रश या नाड़ा डालने वाला जो लकड़ी होती है वो, ऐसे रैंडम चीजें वो लिख देती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये फन है। सो कुछ दिन तक तो बड़ा स्ट्रेस लिया इन मैडम जी ने, लेकिन अब जो है वो मजे जो है वो करने लग गई है एंड बीच बीच में स्ट्रेस भी लेती है कि इनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये बाम लाई होंगी या नहीं लाई होंगी। वैसे आप मुझे बताइए कि आपका वो नोट पैड वाला चैट जो है वो किसका है, मम्मी का, पापा का, हस्बैंड का, भाई का, बहन का या किसी और का? 3311063 पर मुझे बता सकती है कि क्या आप भी ऐसे किसी की चैट को इस्तेमाल करते हैं अपनी लिस्ट बनाने के लिए या इंपॉर्टेंट चीजें लिखने के लिए। मैं हूं आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और मुझे जवाब दीजिए 3311063 पर। इंतजार कर रही हूं मैं, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद नेस्टो।

मेरे पापा अगर रैंडमली मेरे चैट पर आकर लिखेंगे कि दो स्क्रू ड्राइवर और इतने एमएम के नट चाहिए एंड कारपेंटर भैया बबलू का नंबर ये है, तो मैं तो मुझे तो कंफ्यूजन ही होगा ना कि ये क्या बोल रहे हो पापा अचानक से. अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि आपका बीपी वीपी ठीक है या नहीं है और आपने अचानक से कारपेंटर भैया की बात मुझसे करने लग गए आप. तो आपको नोट्स ऐप की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो मैं आज जो इसी पर बात कर रही थी कि आपके कॉन्टैक्ट्स में भी ऐसा कोई इंसान होगा जिसके चैट को आप अपना नोटबुक समझते हो, कि जो मन में आता है जो नोट करना होता है वो उसकी चैट पे जाके लिख देते हो. मेरी मम्मी के सारे पासवर्ड जो है वो मेरी चैट पे आपको मिल जाएंगे. एंड एक बार जो है मैंने स्टोरेज खाली करने के लिए चैट डिलीट कर दी, अब मम्मी मुझे डांट रही थी कि तुमने मेरा पासवर्ड डिलीट क्यों किया. वाओ, वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर. मैं हूँ आपकी गजल सेंसो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ लोगों से इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि उनकी लाइफ को ही अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं, जैसे उनकी चैट को अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं. सो ऐसा ही इंटरनेट पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है एक मीम, जहाँ पर एक लेडी जो है एक अननोन इंसान की चैट पर अपनी ग्रॉसरी लिस्ट लिख रही थी और अब वो दूसरा इंसान जो है वो भी फन कर रहा है. आप लोगों से मैंने पूछा था कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है, तो कुछ मैसेजेस मुझे आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन लोगों ने तो ग्रुप बना के रखा है कि इस पे हम ग्रोसरी शॉपिंग की बात करेंगे, इस पे जितना डांटना वाटना है पेरेंट्स को वो इस ग्रुप पे डांटेंगे. सो ये भी अच्छा आइडिया है. खैर आप लोगों को क्या कहना है इस पे ये भी बता सकते हैं मुझे 3311063 पर. एंड अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कोशिश के साथ एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास.

देखो मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ ये चूज करने में कि मुझे सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, स्कूल जो है वो कहाँ से कंप्लीट करना है, कॉलेज कहाँ से कंप्लीट करना है, लेकिन इस बात में काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि खाना क्या खाया जाए और खाना खाते खाते देखा क्या जाए। तो बस अगर आप भी मेरी तरह ही इनडिसाइसिव से हैं इंसान और आपको चाहिए कि कोई आपको बता दे कि क्या देखा जाए तो मैं बता सकती हूँ आपको। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसू संशो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, आज की रिकमेंडेशन जो है मूवी की वो होने वाली है 2024 की एक बहुत ही इनक्रेडिबली चार्मिंग एंड फील गुड कॉमेडी ड्रामा बेस्ड जो है मूवी, और ये जो है ट्रू स्टोरी पर बेस्ड भी है। मूवी का नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। इसमें जो है बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, जहां पर ये लोग ना एक लो बजट मूवी जो है वो शूट करने की कोशिश करते हैं एंड फाइनेंसेस जो है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से सारे चैलेंजेस को पीछे छोड़कर एक मूवी जो है वो क्यूरेट करते हैं। एक बार जाकर जरूर से मूवी देखो, लाइट हार्टेड है, क्यूट है, मजा आ जाएगा। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो एंड आकर जरा बात करेंगे कि फैशन की दुनिया में क्या कुछ नया चल रहा है। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गाइज व्हाट डू यू मीन कि हम देसीज ने जो फैशन ओल्ड स्कूल समझ कर काफी पीछे छोड़ दिया था, अब ग्लोबल स्टेज पर उस फैशन को वापस लाया जा रहा है एंड अब हम उस ट्रेंड के पीछे जा रहे हैं। हमेशा ऐसा ही हुआ है, मतलब जो भी हमारे पास होता है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती एंड उसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार ये सब लोग

खूबसूरत यू नो लड़की की एंट्री होती है तो वो पायल के साथ होती है, छन छन छन छन, एंड बस यही जो है अब ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुका है. लेग क्लफ कफ्स, ओके मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिकली एंकलेट्स, पायल जो हम काफी लंबे टाइम से पहनते हुए आए हैं वो अब इन ट्रेंड आ गया है. एंड लिटरली हर चीज के साथ ये पहना जा रहा है, हर चीज के साथ, डेनिम स्कर्ट्स, जीन्स, पैंट्स, व्हाट नॉट. सो अब अगर आपके पास कोई एंकलेट्स रखी हुई है पहले से, अभी तक आपने उन्हें ट्राई नहीं किया था, तो यार दिस इज द टाइम, जल्दी से उन्हें निकाल लो. एंड फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इन्हें इंजॉय करते जाओ. और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास टंग चेक brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
2: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू शॉप
4: हाय एवरीवन मैं हूं अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: ये बढ़िया है गाइस, गेट वेल सून बोल के कि कशिश गर्म पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद अपने सवाल पूछ लेते हैं। वेरी नाइस, अटेंशन पाने का अच्छा तरीका है ये। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मेरे भाई जो है मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि हाँ आज ये टी शर्ट तो अच्छी लग रही है, जा पानी लेकर आ। मतलब वरना अगर वो सीधे पानी लाने की बात करते तो मैं शायद उनकी बात नहीं सुनती। वैसे सवाल जो है वो काफी अच्छे हैं, सो इसीलिए जवाब मैं दे रही हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसोसन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, लोगों के सवाल ये है कि अब हमने बैक टू स्कूल में रजिस्टर करना है, कैसे करें। सो आई एम रियली रियली रियली सॉरी, आपने थोड़ी सी देरी कर दी क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं क्लोज, क्योंकि आज 26th और कल है 27th, 27th ऑफ अगस्त को हम मिल रहे हैं अबू सदरा मॉल में बैक टू स्कूल के साथ, जहां पर बच्चों को जो है फन फॉलिक मस्ती मजे का पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरा यू नो ऐसे इंतजाम किया जाएगा जहां पर वो किताबें खोलने से पहले एक बार खुल के खेल सकते हैं। सो जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है वो लोग अबू सदरा मॉल में कल 3 से 7 बजे के बीच में पहुंच जाइएगा। बाकी जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं कर पाया है कोई बात नहीं, आपके लिए हम ऐसे ही इवेंट्स लाते रहेंगे, आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा उसके लिए रेडियो ऑलिव पर, और जाकर आप हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे भी फॉलो कर सकते हैं radioolive.qa पर, वहां पर भी सारी डिटेल्स हम टाइम टू टाइम जो है अपडेट कर रहे हैं। सो जल्दी से जाओ वहां जाके फॉलो बटन दबाओ एंड और कौन कौन से इवेंट्स है वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ाकर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस.

क्या आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ है कि आपने पापा को जो है किसी ब्रांड की कोई चॉकलेट लाने के लिए बोला हो एंड वो चॉकलेट ले आए हो, बस वो ब्रांड की नहीं जो आपने मांगी थी वो नहीं लाए हैं, एंड फिर वो कहते हैं ये सारी चॉकलेट तो सेम ही होती है, एक ही बात है। अब ऐसा ही जो है एक दूल्हे राजा के साथ हुआ, यानी एक ग्रूम के साथ ऐसा हुआ है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूर, सो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो यहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की, फन बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो हुआ ये है कि एक बंदा है जिसने जो है अपनी शादी पर एक गिफ्ट मांगा था कि यार मुझे ना एक प्ले स्टेशन 5 दे दो। तो उसकी फैमिली वालों ने शादी पर उसको लाकर दिया, लेकिन प्ले स्टेशन नहीं, प्लेट स्टेशन 5। यस, सो एक डिनर सेट जो है जिसका नाम प्लेट स्टेशन 5 था, वो लाकर उस ग्रूम को दे दिया कि हाँ तुमने तो यही मांगा था ना, 19-20 का ही तो फर्क है, चल जाएगा यार, कोई बात नहीं। यार देखो बुरा तो लग रहा है मुझे बेचारे के लिए, बेचारे ने अपनी शादी पे ऐसे कोई भी डिमांड नहीं रखी, मतलब जो शेरवानी थी वो भी दुल्हन की पसंद की थी, खाना जो है वो मम्मी के पसंद का था, वेन्यू पापा के पसंद का था, उसने तो बस एक प्ले स्टेशन मांगा था कि मुझे शादी पे ये दे देना ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ कर जो है प्ले स्टेशन पर खेल सकूं, पर प्लेट स्टेशन मिला यार, कोई बात नहीं, अब साथ में बैठ कर प्लेट स्टेशन पे डिनर करना साथ में वाइफ के। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ,
1: जैकी श्रॉफ
0: रेडियो 106.3 जियो बिंदास ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप फोन यूज करते करते आपका फोन इतना गर्म हो गया कि आपको रियलाइज हुआ हो कि यार अब फोन जो है साइड में रख देना चाहिए, अब इसको और यूज किया तो फिर गलत हो जाएगा। बस उसी वाली फीलिंग को मैं अभी जो है महसूस कर पा रही हूँ मेरे गले के साथ। मेरा गला दुखने लग गया है एंड अब वो इतना ज्यादा अंदर से ऐसा गरम गरम सा फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए। सुबह जाती हूँ थोड़ा सा गार्गल करके आती हूँ, गर्म पानी पी के आती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। देखो आपको जो है बिल्कुल भी इस मौसम के चपेट में नहीं आना है और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो आलिफ पर, आप मेरे साथ लाइफ मस्त है शो इन्जॉय कर रहे थे, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। अब देखो यार बस आज का दिन जो है वो निकालना है आपको, कल थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे तो बस इसी होप में हम निकाल देते हैं कि कैसे टाइम बीते और कल का दिन जाए क्योंकि फिर वीकेंड आ जाएगा। बस इसी होप के साथ आगे बढ़िए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना एंड मुझे जो है याद करते रहना, मेरे लिए दुआ करते रहना। रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप जो है फॉलो बटन दबा सकते हैं, वहाँ आपको सभी आरजेज और सारी अपडेट्स मिल जाएंगे, अमेजिंग कॉन्टेंट मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाओ जल्दी से फॉलो कर लो एंड फिलहाल मैं जाती हूँ जाकर गर्म पानी पीती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Here we go.

0: ശാസ്ത്രം പയസഹജം.
1: യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു റേഡിയോ കോളേജ് 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
2: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है. कैसे समझाऊं इस लड़के को.
3: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
2: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
3: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
2: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
2: Brought to you by Riyadha Medical Center.
4: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aap ki seva mein karyarat hai.
5: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
2: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
6: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. रजिस्ट्रेशंस आर ऑफिशियली क्लोज्ड. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th ऑफ अगस्त को. Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
7: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
7: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
7: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
8: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे हम गानों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, बातों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, किस्सों का, खबरों का, कहानियों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात करना चाहेंगे डाइकोटमी ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ठीक है, अगर हम हैप्पीनेस के बारे में बात करें तो एक क्लासिक डिविजन है इंटरनल हैप्पीनेस और एक्सटर्नल हैप्पीनेस के बारे में। तो इंटरनल हैप्पीनेस कैसे आता है? माइंडसेट से, सेल्फ एक्सेप्टेंस से, ग्रैटिट्यूड से, पर्सनल वैल्यूज से। ठीक है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्टेबल होता है और एंटायरली हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम एक्सटर्नल हैप्पीनेस की बात करें तो रिलेशनशिप से आता है, करियर अचीवमेंट से आता है, मनी, प्रेस और मटेरियल गुड से आता है। और ये इंटेंस होता है बट टेम्पररी होता है, फ्रजाइल होता है और वल्नरेबल टू चेंज होता है। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है? अगर इसकी बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इट्स एक्चुअली ए स्पेक्ट्रम, नॉट ए स्ट्रिक्ट बाइनरी। ठीक है, इंटरनल पीस जो है एक हेल्थी एक्सटर्नल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है। सिमिलरली टॉक्सिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें इंटरनल पीस या फिर इंटरनल हैप्पीनेस फील करने से बहुत रोकता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म में जो है ये काम करते हैं। उसके साथ साथ सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स में अगर हम रिलाई करेंगे हैप्पीनेस के लिए तो हम बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे और हमें इनवर्ड सेटिस्फैक्शन के लिए, इनवर्ड हैप्पीनेस के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: फिर से स्कूल।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना आगे की बहुत सोचने लग जाते हैं या फिर पीछे का जो हुआ है पास्ट के बारे में सोच के थोड़ा लॉस्ट हो जाते हैं, तो प्रेजेंट में रहना जो है कभी कभी भूल जाते हैं या फिर छूट जाता है हमसे। अगर ऐसा है तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक मेथड है, वो है 5-4-3-2-1 मेथड। ठीक है, तो 5-4-3-2-1 मेथड के हिसाब से नेम 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, 5 ऐसी चीजें जो आप देख सकते हो उनका नाम बोलो, 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हो उन्हें छू के देखो, 3 ऐसी चीजें जिनको आप सुन सकते हो उन पर ध्यान दो, 2 ऐसी चीजें जिनको आप सूंघ सकते हो या फिर स्मेल कर सकते हो उस पर ध्यान दो, और एक ऐसी चीज जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। तो जब 5-4-3-2-1 मेथड हम यूज करते हैं तो हम एकदम से जो है प्रेजेंट मोमेंट की ओर आ जाते हैं, हम अपने बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट की ओर लेकर आने पे जो है फोकस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं, और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा एनेक्डोट मैं शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बैठ के रील देख रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, और उस टाइम पे ना थोड़ा ऐसे लो फील कर रहे थे हम, थोड़ा ऐसे डाउन चल रहा था सब कुछ अपना। ठीक है, डाउनफॉल चल रहा था एक्चुअली और उतना काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैंने एक रील देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ ने, एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प भी किया मेंटली, अपने आप को थोड़ा क्या कहते हैं बेटर फील करवाने में बहुत हेल्प किया। बेसिकली एक बच्चा होता है, ठीक है, उसके क्लास में एक नया टीचर आता है, तो बच्चा काफ़ी मायूस सा उदास सा बैठा होता है, तो टीचर कुछ पूछता है तो वो थोड़ा ऐसे जवाब देता है, और टीचर पूछता क्या हो गया, तो कहता कि नहीं आई एम वर्थलेस, लोग ये बोलते हैं मेरे बारे में ये सब करके, तो थोड़ा ऐसे खुल सा जाता है। तो टीचर उससे यही बोलता है कि देखो भाई, किसी और का तुम्हारे बारे में जो ओपिनियन है, इट डज नॉट हैव टू बी योर रियलिटी, वो तुम्हारी रियलिटी बने कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, लोग तुम्हारे बारे में हजारों ओपिनियन बना सकते हैं, मगर तुम्हारी सच्चाई तुम डिफाइन करते हो। और ये बात भाई घर कर गई, और यही बात आपके साथ शेयर करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे और कहेंगे जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: zice, ba vrea să mână, ba vrea să mână.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
2: बिंदास। अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
5: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
4: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
5: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
4: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
5: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
4: Brought to you by Riyadha Medical Center.
6: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
7: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
4: Hygiene and Wellness Partner. Johnson's 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
8: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और रिसेंटली मैंने एक मैट्रिमोनियल एड देखा जहां पे एक इन्फ्लुएंसर लड़की ने बोला कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे ग्रूम हो वो कैमरा कॉन्फिडेंट हो, कैमरा शाई ना हो, साथ ही साथ जल्दी जल्दी नए नए कॉन्टेंट आइडियाज भी लेकर आए और रील्स बनाए मेरे साथ करके, क्योंकि वेडिंग के बाद जो है रिलेशनशिप स्टाइल रील्स जो है मैं बनाऊंगी करके। तो कन्वेंशनल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो तो है ही, मगर न्यू एज रिक्वायरमेंट्स भी जो है उस एक मैट्रिमोनियल एड में हमने देखा। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे सोशल मीडिया में, कुछ लोगों को काफी क्यूट लगा, कुछ लोगों को लगा कि क्या हो रहा है करके। बट एनीवे, मुझे तो यही लगता है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है चीजें भी अपने आप में बदलती हैं और ये तो उसूल है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th ऑफ अगस्त को. Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at

0: तो भाई एक और दिन बचा है एक बहुत ही बढ़िया बैश के लिए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो काउंटडाउन जो है खत्म होने वाला है, एक और दिन बचा है बैक टू स्कूल बैश के लिए जो होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, जहां पे बच्चों के साथ हम फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत बढ़िया एक इवनिंग स्पेंड करेंगे, काफी गिफ्ट उन्हें देंगे, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले एंजॉयमेंट जरूरी है। और यही बात बताते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, एक फिजिकल या मेंटल इंप्रूवमेंट होता है एक इंसान के कंडीशन में आफ्टर द रिसीव एन इनएक्टिव ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर पिल या फिर फेक इंजेक्शन देने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट वो महसूस करते हैं कि वो बेहतर हो जाते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे काम करता है? प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली पेन मैनेजमेंट में, स्ट्रेस रिड्यूस करने में, और फटीग, नौशिया, इन सबको हटाने में जो है काम करता है। बट इन्फेक्शंस, कोलेस्ट्रोल या फिर एक्चुअल ट्यूमर्स को ये हील नहीं करता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स इसके बहुत चले हैं, रिसर्चर्स ने जो है प्लेसिबो को यूज़ किया है नए मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए, वेदर दे वर्क बेटर देन फेक ट्रीटमेंट्स और नॉट करके। मगर कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये एक्चुअली काफ़ी फनी चीज़ भी है, क्योंकि आपने शायद देखा भी होगा बहुत सारे रील्स आते हैं जहाँ पे पेट्स को जब खाना देते हैं ना, तो पेट खाना खाने से मना कर देता है। तो ओनर क्या करते हैं, वो खाने को ऐसे रख के उसमें थोड़ा चीज़ें ऐसे डालने का ऐसे प्रेटेंड करता है, फिर वो खाना देता है और वो पेट एकदम बढ़िया तरीके से खाना खा लेता है। और कभी कभी ये चीज़ें हमारे लाइफ में भी बहुत यूज़फुल रह जाती हैं। जैसे कि मैं अपने नीस के साथ, मेरी एक भांजी है, उसके साथ बात कर रहा था। वो कह रही थी कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, वो गिर गई थी। ठीक है, तो फिर मैंने उसे बोला कि अच्छा ये कहते हो ना दर्द नहीं होता, ध्यान से करके देखो करके। तो बेसिकली उसका अटेंशन जब मैंने डाइवर्ट किया उस दर्द से, तो उसे लगा कि हाँ वो ठीक हो गया। तो वो चीज़ करने से, वो पर्टिकुलर चीज़ करने से उसका दर्द ठीक हो जाता है करके। बट नेसेसरली ऐसा नहीं होता है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है और सोचा आपके साथ शेयर करो। और यही बताते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे आज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में हम बात करेंगे फ्रिस्बी के बारे में। ठीक है, तो फ्रिस्बी जो है पहले एक पाई कंपनी हुआ करती थी। उस कंपनी का नाम था द फ्रिस्बी पाई कंपनी, जो न्यू इंग्लैंड कॉलेज के कैंपस में पाई सप्लाई करती थी लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में। तो स्टूडेंट्स जो येल यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि इसका जो अपसाइड डाउन एम्प्टी टिन पैन है, वो जब हवा में फेंकते हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो उड़ता जाता है। तो ये लोग ऐसे एक दूसरे के साथ खेलते थे ये टिन कैन को ऐसे फेंकते हुए, और अगर कोई बीच में से कोई इंसान चल के जाता है तो उसको लगे ना करके ये फ्रिस्बी करके चिल्लाते थे। और ये इवेंचुअली टॉय मेकर्स ने जो है इस शेप को कॉपी किया प्लास्टिक में, एंड दैट्स हाउ फ्रिस्बी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सोच के देखिए एक टॉय जो है कहां से आया है, शुरुआत उसकी कहां से हुई है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में से सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को कॉल बैक गया, इनवाइट गया 27 अगस्त के लिए, यानी कि कल शाम अबू सिद्रा मॉल में बैक टू स्कूल बैच के लिए। बच्चों के साथ स्कूल खुलने से पहले बहुत ही बढ़िया एक इवनिंग हम स्पेंड करने वाले हैं। फुल ऑन मस्ती धमाल होने वाला है, गेम्स होने वाले हैं, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, तो हम तो तैयार हैं। और जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, जिनको हमने इनवाइट भेजा है, वो भी तैयार है। अब बस कल का इंतजार है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
1: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
0: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
1: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
0: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपरहीरोज।
1: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
0: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aap ki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
0: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानिए क्या किया। सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर, रेडियो ऑलिव डॉट क्यू सर्च कीजिए, फॉलो बटन दिख रहा है तो प्रेस कीजिए। अगर वो फॉलो बटन फॉलोइंग की तरह दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमें सुनते हुए आप स्टोरी डाल सकते हैं यार, हमें टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी को रीशेयर करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। तो हमारे साथ रेडियो में ही नहीं इंस्टाग्राम पर भी जुड़े रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे मेरे बहुत जल्दी खत्म हो गए। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे हम। मगर जाने से पहले एक ही दरख्वास्त है आपसे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

Zara Avgaç Gadin. मेराज का दिन कैसा रहा, मैं आपको वापस दौड़ के थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे वॉइस नोट करके भेज दो, बता दो आपका यू नो आपके दिन के बारे में। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इंतजार कर रही हूँ।

0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाँ जी, कुमार सानू अलग अग्नि की आवाज मनाते हैं और सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे को ओनम की ये चीज लगती है भाई, सद्या खाने के लिए मिलती है। आई लव सद्या यार। सो आज हम सारी टीम जो थे वो सद्या खाने गए थे एंड सब लोगों ने उसी तरह के कपड़े जो थे वो पहने हुए थे, थोड़े से ऐसे साड़ी वाड़ी, तो मैंने भी साड़ी पहनी और बड़ा मजा आया। मैंने बहुत सारी फोटोज भी खींची, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, मतलब मजा आ जाता है। सो फुल ऑन आज फेस्टिव सीज, मतलब माहौल था हमारे ऑफिस में। वो जो फूलों से बनता है रंगोली, उसको शायद क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, बट या वो भी हमारे ऑफिस में बना हुआ, तो बहुत ज्यादा मजा आया। कुल मिला के दिन खाते पीते फोटो खींचते खिलखिलाते और तैयार होते ही निकल गया, और अब जो है वो माहौल चार घंटे आप लोगों के साथ बातें करते हुए निकलेगा, मजा आ जाएगा। सो आप में से कितने लोगों ने आज सद्या खाई, कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311106 3 पर।

0: के बगैर मुश्किल ही है सारे काम यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
2: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर 1 आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: अंजी माया और बैक टू स्कूल बैश के लिए जो है वो आप लोगों ने भेजे थे। रजिस्ट्रेशन मेरी जान वो हो चुकी है अब क्लोज, अब जो है वो आप लोग नहीं रजिस्टर करवा सकते, लेकिन यस जिन जिन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया था आप लोगों को कॉल हमारी तरफ से नहीं आएगी, आप ऑलरेडी इन्वाइटेड हो। तो कल शाम को नहीं सिमरन कौर, दोपहर होती है 3 बजे, हाँ कल दोपहर 3 बजे आपसे मिलते हैं अब उसिद्रा मॉल में। टाइमली जो है वो पहले ही पहुंच जाइएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 3 बजे पहुंचिएगा, पहले ही थोड़ा सा पहुंच जाइएगा, फिर मिलके फन करते हैं। बहुत कुछ करेंगे यार, सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर के, दरो जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: ओह नो, फिर से स्कूल।
4: अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को। Venue partner अबू सिद्रा मॉल, where convenience meets choice and community meets style. अबू सिद्रा मॉल, a complete family destination.
5: Gifting partner Daiso Japan. You name it, we have it.
4: And
5: Doha Center. Shop more, pay less.
4: Old Airport Road, Doha and Alcor.
5: Call 70222525.
4: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
6: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
4: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just keep

0: कॉन्फिडेंस की बात बताती हूँ कि एक कॉन्फिडेंस हमारा तब होता है कि जब गाना चल रहा होता है और हम हेडफोन लगा के गाना गाते हैं, और ये मैडम का कॉन्फिडेंस देखो, बिना हेडफोन के गाना मेरे सामने गा रही है यार। तनीषा
1: यार, वो कम्फर्ट है ना आपके साथ,
0: है ना? आज
1: मुझे पता है मैं बेसुरा गा रही
0: है ना। तो भाई, एक तो हमारा ये क्या कहते हैं कि साउंड प्रूफ है, पता है बाहर आवाज नहीं जानी, एक ही बंदे को बर्दाश्त करना पड़ेगा।
1: But you loved it. अब ऐसे क्यों बोल रही हो आप?
0: है ना, आज सब एकदम शुगर रश हो चुका है क्योंकि हमने वो जो सद्या खाई है उसमें जो पायसम खाया है उसके बाद हम सब आए हो चुके हैं यार।
1: पर आप अप्सरा बन के क्यों आई हो आज?
0: ले, मैं तो तेरे को फॉलो कर रही थी क्योंकि तू अप्सरा बन के आई है।
1: नहीं यार,
0: नहीं यार, यार। लड़कियां ऐसी तारीफ कर लेती है अपनी। हम बाहर से मंगवाते नहीं है तारीफ,
1: नहीं हमें
0: चाहिए, नहीं हम खुद से खुद में खुश रहती है यार। अब
1: व्हाट वाज दैट सॉन्ग?
0: केड़ा हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से है नहीं।
1: कैटरीना कैफ।
0: केड़ा?
1: कैटरीना कैफ।
0: तुसी दसो।
1: तीस मार्का।
0: तीस मार्का कौन सा है? शीला की जवानी। हाँ हाँ ठीक है, वो पूरा गाना मत गाना
1: की मुझको जरूरत क्या,
0: मैं तो खुद को खुद से ही प्यार जताऊं। व्हाट वाज इट? सिमरन तनीषा टिना
1: टांटा हो गया।
0: देखा, बात यहाँ पे आती है कि मैंने सिर्फ तनीषा का गाना सुना था, अब आपने, आप सब ने मेरा गाना सुन लिया। आप गाना चाहेंगे मैडम?
1: थैंक यू टू मी। नहीं
0: मैडम, आप गाना चाहेंगी?
1: नहीं।
0: चलो ठीक है, अगले गाने को गाने देते हैं। राहत साहब को सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर के जरिए। जियो बिंदास एंड ओनम आशम सगल। क्या बोलते हैं?
1: ओनम सगन।
0: वाह, बड़ी
1: हैप्पी ओनम गाइस।
0: मुबारक जी ओनम दिया।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

हांजी पूरे शो में करते रहा करो 3311063 पर, एंड उसके साथ साथ क्या कहती है हवाएं।

0: एक काम कर बेटा,
1: तुम मेरी गले कभी आना तुम मेरी गले,
0: समझा क्या? चलो फिर चक्को अगला गाना।

0: सुनो सुनो सुनो,
1: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: Namaskar, main hu R Madhavan.
5: Hi, this is Bipasha Basu.
6: Hi, I'm Rajkumar Rao.
7: Hi, main hu Priyanka Chopra.
8: Hi, this is Disha Pardi.
4: Aap sun rahe hain Radio Holic 106.3 FM.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
10: सिमरन के साथ।
11: Zabardast evening, make you drive golden with.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: हाँ जी, 6:21 स्टूडियो की घड़ी पहुंच चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, क्या बोलते हो?
1: तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, आज चलती क्या?
0: उसमें चाचा की चाय पिला दूं, आज चलती क्या? बिल्कुल चाय पीऊंगी यार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। देखो यार, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं बैक टू स्कूल बैच के लिए। सो बैक टू स्कूल बैच जो है ना, वो डेफिनेटली होने वाला है। और जिन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया था, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, सो अगर आपने नहीं करवाया था तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपने रजिस्टर करवा लिया था तो आप लोग जो है इन्वाइटेड हैं डेफिनेटली अबू सिद्रा मॉल में। कल दोपहर 3 बजे आ जाइए, 3 से लेकर 7 बजे के बीच में हम होने वाले हैं वहां पर। आपके बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं, बहुत सारा फन करने वाले हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी होने वाले हैं। सो 6:22 स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ है। जियो बिंदास है।
2: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

और बताओ सब क्या चल रहा है लाइफ में आपके। मैं अभी देख रही थी कि अपने कतर में जो है एक कैफे ओपन हुआ है। कैफे तो देखो बहुत सारे ओपन होते हैं। ये मतलब आपको एक्वेरियम जो है वो उसके अंदर मिलेगा। ये ओल्ड दोहा पोर्ट पर है, द टर्मिनल द ओल्ड दोहा पोर्ट। जी हाँ, इंडोर कैफे है जहां पर आपको जो है जब आप कॉफी पी रहे हैं वहां पे कैफे शॉप में बैठे हैं सो आपको एक्वेरियम जो है वो दिखेगा और बहुत सारा बढ़िया एकदम मरीन व्यू जो है वो आपको दिखेगा। यार मेरा बहुत मन है यार यहाँ पे जाने का। कतर में बहुत सारी क्रिएटिव चीजें जो है वो ओपन होती रहती है। सो 6:34 18 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। आने वाले गानों में से

0: इसमें कोई दो राय नहीं है. सुंदरी रेडियो वाले पुर के जरिए जियो बिंदास.
1: What a baby.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

मैं खो गई थी। अरे आपकी आंखों में क्या यार, मैंने कोशिश की थी ये बोलने की लेकिन बात नहीं बनी। 6:51 25 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे।

0: थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए, ऐसे ही करते रहिए, मेरा दिल जो है वो लगा रहता है यार। देखो अकेले के लिए जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे मजा उतना नहीं आता है। देखो बोलने में तो मजा आता है लेकिन मजा मुझे उससे ज्यादा तब आता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स आती रहती है और आप कुछ ना कुछ पूछते रहते हो यार। जेंजी लिंगो को हम करते हैं डिकोड। अगर आप किसी जेंजी से चैट कर रहे हैं और उसने आपको लिख दिया TTYS तो आपको उसका मतलब नहीं पता लगेगा, तो उसका मतलब है टॉक टू यू सून। यस, सो या ये लिंगो डिकोड करनी होती है क्योंकि ये जैसी दिख रही है आपको वैसी नहीं होती है। ये आप कुछ भी उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे उसका मतलब कुछ और ही निकल आता है। सो अगले घंटे बहुत सारी बातें हैं एक फिल्म के बारे में जो हम करेंगे। आज कौन सी फिल्म के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा इंतजार करिए, सुनते रहिए रेडियो ओलिव कर, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर।

लगती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

रही है जी हम भी। बिल्कुल प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन ये फिल्म का नाम पहले प्यार किया तो डरना क्या नहीं था, टाइटल किया गया था, इसका नाम था जन्नत। एंड यस, धर्मेंद्र थे इस फिल्म में, सलमान खान थे। सलमान खान ही थे जिन्होंने सजेशन दिया था कि यार इस रोल के लिए धर्मेंद्र जी को जो है वो कास्ट करते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले उनकी तमन्ना थी कि वो धर्मेंद्र के साथ जो थे वो काम करना चाहते थे। और यहीं से हिमेश रेशमिया ने डेब्यू किया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जो था वो जो कंपोज किया था। एंड इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं वापस लौट के वो सारी बातें आपको बता देती हूँ। पार्टी थोड़ी ओवर हुई है अभी। पार्टी तो यूं ही चलेगी ब्रो।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

हाँ जी, प्यार किया तो डरना क्या। सोहेल खान की पहली हिट फिल्म एज ए डायरेक्टर। जी हाँ, सलमान खान का शर्टलेस वाला जो ट्रेंड था ना, वो इसी फिल्म से चालू हुआ था। मैं कह जी सोने की दादी की हलचल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। सो संजय दत्त जो थे वो अरबाज खान वाले रोल में आने वाले थे, लेकिन बाद में सोहेल खान ने सोचा कि नहीं यार, मतलब रियल ब्रदर जो है ना, वो दोनों इस फिल्म में होने वाले हैं। सो इसमें एक ऐसे यू नो इंसान का रोल है शमसुद्दीन का, जो कि बहुत ही छोटा सा रोल है, कोई क्रेडिट भी नहीं मिला उस छोटे से रोल के लिए उनको। बट इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको सांप ने काट लिया था, और सांप ने इतने बुरे तरीके से काटा था और इतना जहरीला था कि भाई उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो 5 महीने तक जो थे वो मतलब हॉस्पिटल में थे, और बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था उनका यार। कभी सर्च करके देखना, उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि उनका रोल बहुत ज्यादा छोटा था। और अब बात करें इस फिल्म के उस गाने की, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाने, इस गाने को लेके सब लोग पागल हो जाते हैं जैसे ही गाना चलता है। बट 6 साल तक किसी भी म्यूजिक कंपनी ने उसके लिए ओके नहीं किया था, मतलब वो नहीं, उनको लग नहीं रहा था कि ये गाना कुछ ऐसा है, रिजेक्ट कर दिया था। बट जब ये गाना सलमान खान के पास आया तो उन्होंने बोला नहीं, ये गाना मेरी फिल्म में यूज होगा। और फिर देखो यार, 7:18 स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ है।

0: सुंदरी रेडियो ओलिव कोर के अंदर जियो बिंदास वापस लौट के रियलिटी चेक भी होगा, बेबी नेम गेम भी होगा।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ।
0: सो मैंने बहुत प्यारी कल चीज पढ़ी थी कि फास्टेस्ट वे टू लूज योर ओन रिस्पेक्ट इज टू कीप इटिंग योर सर्कमस्टेंसेज इंस्टेंट ऑफ चेंजिंग देम। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम में से बहुत सारे लोग हैं बहुत बार करते हैं कि हम अपनी किस्मत को लेके या किसी सिचुएशन को लेके रोते रहते हैं, यार लाइफ में यही चल रहा है, यार मेरी तो लाइफ खराब है, यार इसने ये कर दिया, मेरी लाइफ में ये हो गया। यार मतलब हमारी खुद की लाइफ है, जब तक हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जो चीज हमको परेशान कर रही है, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको नहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर फायदा क्या है यार। मतलब उससे आप खुद की ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई आप उस सिचुएशन में भी हो, आप गलत तरीके से फंसे भी हुए हो, मतलब आपकी जिंदगी आगे भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो। तो कोई बाहर वाला तो आके करेगा नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा माई फ्रेंड। बाकी मनी फॉलोज माय फ्रेंड। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन आपको खुद ही चेंज करनी पड़ेगी। रोते मत रहिए, कई लोगों को बड़ी आदत होती है हर बात पे रोते हैं, और कई लोगों की सारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है फिर भी रोते रहते हैं। भाई वो अलग लेवल के बंदे होते हैं यार।

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशंस आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अब उसिद्रा मॉल में 27th of August को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding, at the heart of every day. Supported by Fruity Friends, Nature's Candy, Qatar's number one healthy snack. FNB partner, McDonald's.

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आप लोग भी हो ये मैं भूली नहीं हूँ, इसीलिए तो चलो फिर। देखो डार्लिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम अब भी के अभी रेडियो पे बोल दूं तो आप अब भी के अभी अपना नाम मुझे बता दीजिए, बस काम हो गया, मैं बोल दूंगी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ, 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दो, मैं क्विकली इंतजार कर रही हूँ। ओके, सो डेजी जी थैंक यू सो मच, रमन जी थैंक यू सो मच, आजमा जी थैंक यू सो मच, हुमायूं जी थैंक यू सो मच, भूपेंद्र जी थैंक यू सो मच, रोकौन जी थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखिए, हाय हेलो लिखने की जरूरत नहीं है। नैनदीप जी थैंक यू सो मच, संदीप जी थैंक यू सो मच, राजीव जी थैंक यू सो मच, श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, करण जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निर्मल जी थैंक यू सो मच, राज जी थैंक यू सो मच, आदिति जी थैंक यू सो मच, यूनस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, श्याम जी थैंक यू सो मच, दिवांशी जी थैंक यू सो मच, लियाकत जी थैंक यू सो मच, सिर्फ और सिर्फ नाम दोस्त, कुशल जी थैंक यू सो मच, उपाध्याय जी थैंक यू सो मच, सईद करीम जी थैंक यू सो मच, अक्रम जी थैंक यू सो मच, खेमराज जी थैंक यू सो मच, अल्फिया सरफराज फ्रॉम दुबई थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज के लिए, सईद करीम जी थैंक यू सो मच, सौजन्या जी थैंक यू सो मच, विक्रम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्त, थोड़ा सा टाइम रह गया है। मोहम्मद वसीफ जी, मोहम्मद अफीफ जी, बुशरा तरन्नुम जी, रवि जी, जिमल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, धर्मेंद्र जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाजरा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हाशिम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू हो रहा है, बस बस बस। सीमा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अक्रम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एक काम करो, ये जो आप अपना जगह का नाम भी लिख रहे हो, पिन कोड नंबर भी लिख दो, वो भी मैं बोल देती हूँ। सो जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, बट आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो।

0: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Hi, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाने वाली हूँ और आप चाहिए तो रिकॉर्डर ऑन कर लो ताकि आप दो चार बार सुन सको ताकि आपको पता लग जाए कि गाना कौन सा है। वैसे तो इस गाने को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जाती हैं जज्बात ऐसे हो जाते हैं यार जब ये गाने का ये वाला म्यूजिक चलता है। सो बताइए कौन सा गाना एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ क्योंकि आप जबरदस्त इवनिंग सुन रहे हैं। हे सिमरन अपना नाम बताइए और गाना गा के बताना या बोल के बताना वो डिसाइड कर लीजिए और भेज दीजिए 3311063 पर। कृपया लिखने की वो ना करें, हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है अब दोबारा से सुन लो। याद आ गया, लिखने का कष्ट मत करें ठीक है। 3311063 पर भेजो ये कौन सा गाना है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया।
0: और एक चुटकी सॉन्ग है, देखते हैं आपने पहचाना कि नहीं। थी ना ये गाने का बस उतना ही काफी है यार जितना मैंने धुन सुनाया।
3: हाय सिमरन, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग।
3: इस गाने का नाम है अधूरियां।
0: हाय हाय, गा देते तो ज्यादा मजा आता।
4: हाय सिमरन,
0: हाय,
4: गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग,
4: दिस इज सिकंदर हियर। ये सॉन्ग है सैफ अली खान।

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ लेकिन एक पॉजिटिव चीज आपको मैं बता के जाऊंगी। वैसे तो मैं सारी पॉजिटिव बातें करती हूँ, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी वाली बात आपको ये बतानी है कि कल मैं अकेली नहीं आऊंगी, कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। कल आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, वैसे तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कल काम की टेंशन नहीं लेनी है, ढप ढप ढप निपटा देना और आज आराम से सो जाओ, ओवरथिंकिंग मत करना, ठीक है। कल करेंगे मस्त वाला फन, कल बैक टू स्कूल बैच भी है, कल अबू सिद्रा मॉल में आप सबसे मिलने वाली हूँ, मैं भी आने वाली हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। सो खाने पीने रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

Hi, good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. आजकल इंटरनेट पर एक अजीब सा टाइम मशीन चल रहा है. 2016 इज बैक. और थोड़े टाइम पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि 10 साल पुरानी पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए हर कोई कह रहा था. ओल्ड इंस्टाग्राम फोटोज, स्नैपचैट फिल्टर्स, ओल्ड फैशन, ओल्ड सॉन्ग्स, पीपल आर सडनली ब्रिंगिंग बैक एवरीथिंग फ्रॉम 10 ईयर्स अगो. और फनी बात पता है क्या है, 2016 में हम सोच रहे थे कि फ्यूचर कितना अमेजिंग होगा और 2026 में हम कह रहे हैं कि भाई 2016 वापस ले आओ. सोशल मीडिया पर हैशटैग 2016 का ट्रेंड इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि मिलियंस ऑफ पोस्ट उस नॉस्टैल्जिया वेव का पार्ट बन गए हैं. पीपल आर रिक्रिएटिंग दैट ओल्ड इंस्टाग्राम लुक, शेयरिंग डिकेड ओल्ड पिक्चर्स एंड ब्रिंगिंग बैक द म्यूजिक एंड फैशन ऑफ दैट एरा. और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे वो 10 साल पुरानी चीज़ें आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं. यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास आज भी 10 साल पुरानी बहुत सारी चीज़ें और कपड़े हैं. बट वाई? क्योंकि लोग 2016 सिर्फ एक ईयर नहीं मान रहे थे. फॉर मैनी पीपल इट रिप्रेजेंट अ टाइम वेन द इंटरनेट फेल्ट अ लिटिल लेस पॉलिश्ड, लेस AI ड्रिवन एंड लिटिल मोर स्पॉन्टेनियस. फोटोज परफेक्ट नहीं होते थे, फिल्टर्स बहुत ही बेकार होते थे, और फिर भी सब कुछ समहाउ मोर रियल लगता था. तो अगर आपको 2016 से एक चीज़ वापस लानी हो, चाहे वो फैशन है, म्यूजिक है, स्नैपचैट फिल्टर्स हैं या फिर पुराना इंस्टाग्राम, तो वो केयरफ्री वर्जन आप क्या लेकर आओगे, मतलब क्या चूज करोगे? 3311 1063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज,
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

What a beautiful track it was. You are listening Radio All in 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Midnight Lounge. भाई मतलब Midnight Lounge चल रहा हो और सुपरहिट गाने ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. इन दो घंटे में हम बहुत सारे सुपरहिट अमेजिंग गाने सुनते हैं, कभी पुराने कभी नए. सो इसी के साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. मूवी देखने जाते हो या मूवी का एक्सपीरियंस लेने? कल मैं बात कर रही थी कि आज टॉक्सिक रिलीज होने वाली है और आज टॉक्सिक रिलीज हो गई है. सो कुछ फिल्म्स सिर्फ फिल्म्स नहीं होती, उनके रिलीज का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है. फ्रेंड्स ग्रुप में प्लानिंग करने लग जाते हैं, फर्स्ट शो जाएंगे, मॉर्निंग शो जाएंगे, वीकेंड पे जाएंगे, टिकट्स बुक हो जाती हैं, पॉपकॉर्न के लिए तैयारी हो जाती है और सेल्फी आउटसाइड थिएटर बिल्कुल मतलब ज़रूरी है. पर फिर मूवी के बाद एक और दो घंटे का डिस्कशन. मुझे तो एंडिंग समझ ही नहीं आई. और आज ऐसे ही टॉक्सिक जैसी बिग रिलीज के अराउंड एडवांस जो डिमांड चल रही थी उसी के बारे में बात कर रही हूँ. टाइमिंग्स की बस दिखती है जो थिएटर सिनेमा होते हैं, सो वहाँ पर इवेंट की तरह इस मूवी को सेलिब्रेट किया जा रहा है. और OTT के ज़माने में इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि घर पर आप कंफर्टेबल हो लेकिन थिएटर में आप 300 स्ट्रेंजर्स के साथ एक ही इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. सो पूरा हॉल एकदम हंस रहा है,

एंट्री हुई और हीरो की और वहाँ पे सीटियाँ बज रही हैं और वो कलेक्टिव एनर्जी ना घर के सोफे पर रिक्रिएट करना तो बहुत मुश्किल है. सो आपके लिए मूवी का मतलब क्या है, कंफर्ट ऑन द सोफा या फिर पॉपकॉर्न के साथ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस. बाय द वे जो ये मूवी है यश की, इसकी ना अलग ही वाइब चल रही है. मतलब इसके लिए एक्स्ट्रा शोज लगाए गए हैं मॉर्निंग और नाइट में. बाय द वे यू टेल मी कि आपकी क्या प्लानिंग है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
1: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
0: And
1: Doha Center, shop more, pay less.
0: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
0: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
2: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the heart of every day. Supported by Fruity Friends, Nature's Candy, Qatar's number one healthy snack. FNB partner, McDonald's.

यार पता ही नहीं चलता कि वीकेंड कब आ जाता है. मतलब टुडे इज ऑलरेडी वेंसडे और कल हमारे पूरे वीक का आखिरी वर्किंग डे है. एंड आई वाज लाइक कि क्या प्लान किया जाए यार, मूवी भी आ चुकी है अच्छी खासी और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो एक टाइम था सॉन्ग रिलीज होता था, हम पूरा सॉन्ग सुनते थे, इंट्रो, फिर उसका यू नो कोरस क्या है, अंतरा क्या है, एंड क्या है. और आज समटाइम्स हम पहले ही पूछते हैं इसका रील वाला पार्ट कौन सा है. सोशल मीडिया हैज़ चेंज द वे म्यूजिक ट्रैवल्स है ना. एक गाना वायरल होने के लिए कभी कभी पूरे 5 मिनट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक हुक, कोई बीट, कोई लाइन और बस हज़ारों लाखों रील्स बनना शुरू हो जाती है. बट देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो क्या हम सॉन्ग्स को अब पूरा एक्सपीरियंस करें या सिर्फ उनके मोस्ट कैची 20 सेकेंड्स? क्योंकि जो अच्छा गाना होता है इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट कोरस है ना. समटाइम्स द लाइन्स दैट हिट्स यू हार्डेस्ट वो थर्ड जो पैरा होता है उसमें छुपी होती है. और यही एल्गोरिदम है जो कभी भी कम्प्लीटली डिसाइड नहीं कर सकता. तो आज रात अपना फेवरेट गाना सोचिए और मुझे बताइए 3311063 पर उसका वो एक लाइन या हुक क्या है जो आपको सुनते ही ना आपका मूड चेंज हो जाता है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Yeah, midnight
1: love. So, आज ओनम का बहुत ही स्पेशल डे है. सो केरला में ओनम का सेलिब्रेशन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होता, वहाँ पर पोकलम है, ओनम सॉन्ग्स हैं, कपड़े, ऑब्वियसली ओनम सद्या, और कतर में भी वही सब देखा है मैंने. बट इमेजिन समवन सेलिब्रेटिंग ओनम इतने हजारों किलोमीटर दूर फ्रॉम केरला. दोहा में, दुबई में, लंदन में, सब जगह सेम बनाना लीव्स और सेम घर वाला वाइब. सेम नेबरहुड नहीं होता, लेकिन एक पोकलम बना दिया, सद्या अरेंज कर लिया, फैमिली को वीडियो कॉल कर लिया और सडनली आप घर पहुंच गए. दैट्स व्हाट ट्रेडिशंस डू. दे ट्रैवल विद अस. और आप सिटी चेंज करते हो, कंट्री चेंज कर सकते हो, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते. बट मुझे ऐसा लगता है कि सम ट्रेडिशंस क्वाइटली फॉलो यू, ठीक है ना. ओनम इज रूटेड इन केरलास कल्चरल ट्रेडिशंस. एंड मुझे लगता है कि इतनी सारी स्टोरीज सुननी हमें ओनम को लेके. और आज ओनम का जब इतना खूबसूरत दिन है, तो अक्रॉस केरला एंड बाय मलयालीज अराउंड द वर्ल्ड मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन चल रहा था. और इवन आज हमारे ऑफिस में भी बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन था. सो आज का सवाल स्पेशली उन लोगों से है जो घर से दूर हैं, और आपके घर की वो वन ओनम ट्रेडिशन क्या है जो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो आप नहीं छोड़ते. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो.

0: hello.
1: गुड इवनिंग. इमेजिन कीजिए आपका फ्रेंड पूछता है आज क्या सुनना है और आप बोलते हो कि पता नहीं मूड अजीब सा है और एआई बोलता है कि आई अंडरस्टैंड और प्लेलिस्ट चालू. एग्जैक्टली वो सॉन्ग जो आपको चाहिए था. टेक्नोलॉजी म्यूजिक को सिर्फ प्ले नहीं कर रही है, इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पार्ट ऑफ हाउ म्यूजिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्कवर्ड एंड अंडरस्टूड. मतलब वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एक्सपेंड किया है जहां पर बेंगलुरु में ये फोकस किया गया है कि किस तरह से फ्यूचर का म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है. मे बी वी विल स्टॉप सर्चिंग बेस्ट सॉन्ग्स फॉर लेट नाइट और सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि गिव मी समथिंग दैट फील्स लाइक टू नाइट. बट देयर इज वन क्वेश्चन, इफ एन एआई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड योर टेस्ट, Will it discover music for you or slowly decide your taste for you? मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए बट रेडियो पे वो जो रैंडम गाने प्ले होते हैं ना उसकी बात ही अलग है. जब मैं रेडियो सुनती हूँ, जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ या जब मैं ऑफिस आ रही होती हूँ, तो मुझे लगता है वो ना बेस्ट टाइम होता है. आपको नहीं पता कि अगला गाना कौन सा होगा और आप अलग ही यू नो जोन में चले जाते हो. सो अगर आपको पता चले कि आपका फेवरेट सॉन्ग एआई ने क्रिएट किया है, क्या आप उसे सेम इमोशन के साथ सुनोगे या आपको लगेगा कि यार पता नहीं मतलब ये मेरा टेस्ट है भी या नहीं. 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio, Bindas.

आज आपको एक नया वर्ड सिखाऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं एक सिंपल से वर्ड, यानी कि पुराने वर्ड ड्यूप से, DUPE, राइट? शॉपिंग में एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जो कि कहता है ड्यूप के बारे में, मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव। और ब्यूटी वर्ल्ड में तो ये ट्रेंड स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको कोई 500 रियाल का प्रोडक्ट पसंद है और वही प्रोडक्ट आपको 50 या 100 रियाल में मिल सकता है, ऑलमोस्ट सेम, राइट? और AI पावर्ड सर्च भी लोगों को ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में हेल्प कर रहे हैं। करंट ब्यूटी ट्रेंड में डूप इकोनॉमी, एक नया वर्ड है, DOOP इकोनॉमी को ग्रोइंग कंज्यूमर बिहेवियर के रूप में ना हाईलाइट किया जा रहा है। सो देयर इज अ बिगर क्वेश्चन बिहाइंड इट, डू वी एक्चुअली वांट द ब्रांड और हमें सिंपली रिजल्ट चाहिए? अगर दो प्रोडक्ट्स में सेम रिजल्ट है तो हम कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए फॉर सेम पीपल कि हम कम जो प्राइस वाला है वो खरीदेंगे? भाई कम होना चाहिए बस।

Honestly, that's, you know, just beauty. Fashion ho, gadgets ho, furniture ho, almost everything. तो आप किस कैटेगरी में हो? आपको लगता है कि यार ओरिजिनली चाहिए या स्मार्ट ड्यूप्स मिल जाए तो हैप्पीली आप ले लेते हो? बाय द वे, अगर मैं बात करूँ कपड़ों की, तो मैं तो ड्यूप्स में भी उतनी ही खुश रहती हूँ. बाय द वे, आई डोंट लाइक पर्सनली वो बड़े बड़े लोगोस. आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट दे के आप एक पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना चाहते हो या फिर ड्यूप्स आपको भी पसंद है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून. ये है मिडनाइट लाउंज.

Good evening, you are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you और शो का नाम है Midnight Lounge. एक स्ट्रेंज ट्रेंड दिखा है. टेक्नोलॉजी हमें सालों से बोल रही है न्यू इज बेटर, और अब इंटरनेट बोल रहा है कि एक्चुअली ओल्ड वाला वापस लाओ. फिल्म कैमराज, ओल्ड डिजिटल कैमराज, या फिर कुछ पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, या फिर हैंड रिटन जर्नल्स हैं, रेट्रो फैशन है, इवन हॉबीज दैट इन्वॉल्व्स फिजिकली यू नो मेकिंग समथिंग. सो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें 2026 का जो ट्रेंड है, लोग चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें वापस आएँ. नॉस्टैल्जिया, हैंड्स ऑन एंड एनालॉग हॉबीज, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोग मिस कर रहे हैं. और मे बी द अट्रैक्शन इज नॉट रियली अबाउट द ओल्ड टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट द फ्रिक्शन. फिल्म कैमरा में 200 फोटोज नहीं ले सकते थे, सो यू एक्चुअली लुक बिफोर प्रेसिंग द बटन, राइट? और हैंड रिटन लेटर्स में ऑटो करेक्ट नहीं होता था, सो यू थॉट बिफोर राइटिंग. और ऐसे ही बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, मतलब पुरानी चीज़ें थी जो नई चीज़ों में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं. अब आज अगर हम कहीं जाते हैं और मेरे कॉलिग्स मेरे साथ हैं, मान लीजिए मुझे 10-15-20 फोटो के बाद फिर भी यही कहा जाता है कि यार फोटो अच्छी नहीं आई और ले लो. पर पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था, एक फोटो क्लिक किया और हो गया. बेबी मॉडर्न लाइफ मेड एवरीथिंग फास्टर, एंड नाउ वी आर रीडिस्कवरिंग द ब्यूटी ऑफ स्लोइंग डाउन. तो मैं तो वही पुरानी वाली चीज़ें पसंद करती हूँ. तो अगर आपको एक ओल्ड स्कूल चीज़ वापस लानी हो तो आप क्या लेकर आओगे? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हेलो, ये है मिडनाइट लाउंज।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन Radio Olive 106.3 FM.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. भाई वेंसडे खत्म हो चुका है, अब कल थर्सडे यानी कि लास्ट वर्किंग डे और बहुत सारा एक्साइटमेंट. आई एम श्योर आपने ऑलरेडी प्लान्स बना रखे होंगे, मूवी पे जाना है, बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई है, और या फिर दोस्तों के साथ कुछ और प्लान्स हैं. अब लास्ट यू नो जाते जाते मुझे थोड़ा सा आपसे एक बात करनी है इमेजिनेशन वाला. आज 2026 है, इमेजिन कीजिए 2036 एक टीनेजर हिस्ट्री क्लास में बैठी है और यू नो टीचर बोलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम पीपल कैरिड फोन्स इन देयर पॉकेट. स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या, दे हैड अ चार्जर और एवरी नाइट उन्हें चार्ज करना पड़ता था. मतलब सोचिए, पासवर्ड डालना पड़ता था या फिर यू नो रेड लाइट्स पर और ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ता था. दे यूज टू टेक 50 फोटोज ऑफ द सेम कॉफी बिफोर ड्रिंकिंग इट एंड द किड इज थिंकिंग दीज पीपल वर लिविंग लाइक दिस. और हर जनरेशन यही सोचती है कि लाइफ स्टाइल जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है अंटिल 10 साल हो जाते हैं. नॉर्मल बिकम्स विंटेज. सो लेट्स मेक अ यू नो प्रिडिक्शन कि अगले 10 साल में यानी कि 2036 में वी विल लाफ एट हाउ मेनी एप्स वी नीडेड. मे बी वी विल लाफ एट पासवर्ड्स, मे बी वी विल लाफ एट ट्रैफिक, मे बी वी विल लाफ एट पीपल आर्ग्यूइंग आईफोन बेटर है या एंड्रॉयड, और मे बी something we haven't even imagined yet will make today's world look you know more prehistoric. So aaj midnight lounge ka question ye hai ki 2036 ke log hamari 2026 ki kaun si aadat dekh kar bolenge ki yaar seriously aap log ye sab karte the. Main hu Muskan aur ye hai midnight lounge aur aaj hum 2016 mein gaye the. Future jo hai 2036 tak pahunch gaya hai aur beech mein music, movies, onam ka ye khoobsurat sa din aur ai se bhi यू नो मिल लिए हैं आज हम. लाइफ फास्ट है, दुनिया और भी ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए कभी कभी रात को बस रुक कर सोचना भी ज़रूरी है. सो आज बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आपसे बस कहूँगी गुड नाइट. कल विद द वीकेंड वी विल मीट. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Yo, India.